0: मेरो फुलीवाली अब के छ त विचार
1: के विचार को फुलीवाली मतलब बहिनी
0: बहिनी त साली हो तिमी नै त अनि मेरो फुलीवाली